0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: रेडियो 2000 98.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.

0: में देश में विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के मार्गदर्शन में ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, मानस खंड मंदिर मिशन तथा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों ने देवभूमि को नई पहचान दिलाई है। इन परियोजनाओं ने देश में कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन, रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने देश को एक भरोसेमंद और स्थिर सरकार देने के लिए लगातार काम किया है। 2014 के बाद पीएम मोदी के रूप में भारत को एक पारदर्शी नेतृत्व मिला है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक को लेकर अहम जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह सम्मेलन छोटे किसानों के सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में नवाचार को नई दिशा देने वाला साबित होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी आगे ले जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि और उन्नत तरीकों के उपयोग जैसे अहम मुद्दे बैठक के केंद्र में रहेंगे, जिन पर मंत्री स्तर पर गहन चर्चा पर ठोस फैसले लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की समृद्ध संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने के लिए मांडू का दौरा भी कराया जाएगा। गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से के बाद यूपी को एक नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे के बनने में यूपी के विंध्य क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। विंध्या एक्सप्रेसवे यूपी के साथ मध्य प्रदेश के रीवा और संताना जैसे ज़िलों को भी यूपी से जोड़ेगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने से प्रयागराज से रीवा, संतना और सीधा गंगा एक्सप्रेस से कनेक्ट होगा, जिससे विंध्या क्षेत्र के लोग सहज 8 से 9 घंटे में दिल्ली NCR पहुंच सकेंगे। यह प्रस्तावित कॉरिडोर 330 किलोमीटर लंबा होगा और हांडिया तहसीलों में फैले 84 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके बाद सोनभद्रा की ओर बढ़ेगा। आगे चलकर यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी जुड़ेगा। शुरुआती चरण में यह 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तृत किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के निर्माण पर करीबन 22,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएंगे। एक्सीडेंट में जब किसी इंसान की मौत होती है तब उसकी कमाई या सैलरी के हिसाब से मुआवजा तय होता है, लेकिन होम मेकर महिलाओं से जुड़े केस के मामले उलझ गए हैं, क्योंकि होम मेकर महिलाओं की कोई कमाई तय नहीं होती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर गृहिणियों के मुआवजे को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जब किसी दुर्घटना के कारण किसी गृहिणी की मौत हो जाती है तब उसका मुआवजा तय करते हुए उनके योगदान का आंकलन आवश्यक है। अदालत ने कहा कि गृहिणियों का योगदान केवल परिवार तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वो मानव संसाधन और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उन्हें केवल होम मेकर कहने की बजाय नेशन बिल्डर कहा जाए तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए होम मेकर महिलाओं की मौत पर 30,000 रुपये महीने के हिसाब से मुआवजा तय करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों से अपेक्षा जताई कि ऐसे मामलों की निगरानी करें ताकि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो सके। मणिपुर में 6 नागा बंदकों की हत्या के बाद बवाल शुरू हो गया। जिस अस्पताल में नागा बंदकों के शव के पोस्टमार्टम हुए वहां हजारों लोगों की भीड़ जुटी रही। इसके अलावा नगा बाहुलो इलाकों में
1: आगजनी और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इस घटना के बाद नगा सिविल सोसाइटी ने 24 घंटे बंद का आह्वान भी किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सचिव की ओर से जारी किए गए एक पत्र के मुताबिक दुनिया भर में चल रहे हालात को देखते हुए एलपीजी पर निर्भरता कम करना ज़रूरी हो गया है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण गैस की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार अब देश भर में पाइन नेचुरल गैस पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। जिन इलाकों के में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है वहां लोगों को धीरे धीरे एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट करने की योजना पर काम चल रहा है। कभी कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास सड़कों पर भटकने वाला एक आवारा कुत्ता आज ग्लोबल पीस एम्बेसडर डॉग बन गया है। इस स्पेशल कुत्ते का नाम है आलोका। 4 साल का आलोका भारतीय नस्ल का परिया डॉग है। आलोका के साथ के माथे पर दिल के आकार का एक प्राकृतिक निशान बना हुआ है। आलोका की कहानी 2022 से शुरू हुई। उस समय भिक्खु पन्नाकारा के नेतृत्व में भिक्षुओं का एक दल कोलकाता से बोधगया तक 3400 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर निकला था। यह यात्रा भारत और नेपाल से होकर गुजर रही थी। कुल 112 दिनों तक चलनी थी। इसी यात्रा के शुरू होने के 6 दिन बाद यह आवारा कुत्ता आलोका उनके साथ हो लिया। आलोका 112 दिन की यात्रा में भिक्षुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। उसकी वफादारी और हिम्मत देखकर भिक्खु पन्नाकारा ने उसे कानूनी रूप से गोद लिया और अपने साथ अमरीका ले गए। अमेरिका पहुंचकर आलोका ने टेक्सास के फोर्ट वर्थ से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक 10 से ज़्यादा राज्यों में करीबन 3700 किलोमीटर की यात्रा की उनके साथ हो लिया। आलोका 112 दिन की यात्रा में भिक्षुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। उसकी वफादारी और हिम्मत देखकर भिक्खु पन्नाकारा ने उसे कानूनी रूप से गोद लिया और अपने साथ अमरीका ले गए। अमेरिका पहुंचकर आलोका ने टेक्सास के फोर्ट वर्थ से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक 10 से ज़्यादा राज्यों में करीबन 3700 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान वह लोगों से मिलकर शांति और प्रेम का संदेश देता रहा। आलोका ने श्रीलंका और थाईलैंड की भी यात्रा की। उसके शांत स्वभाव, धैर्य और लोगों के प्रति अपनापन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर सतीश सेठ को मुंबई से गिरफ्तार किया है। सतीश रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार उन्हें 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी गई है। यह मामला SBI से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। इसमें धोखाधड़ी करने और SBI को 114.98 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। SBI उन 11 बैंक्स के कॉन्स्टोरियम का सदस्य था जिन्होंने रिलायंस टेलीफोन लिमिटेड को कुल 735 करोड़ रुपए की टर्म लोन सुविधा को मंजूरी दी थी। यह मामला दर्ज होने के बाद CBI ने मुंबई में सतीश सेठ और गौतम बी दोषी के आवास और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के रजिस्टर्ड ऑफिस से तलाशी ली थी। लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। खेल समाचारों में फीफा वर्ल्ड 2026 का आगाज 11 जून से हुआ। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दौरान फुटबॉल का ध्यान विशेष रूप से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और मबापे समेत 11 खिलाड़ियों पर है। भारत को सिर्फ एक बार 1950 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका मिला जो सपना ही बन के रह गया। लेकिन हर 4 साल बाद ये साबित हो जाता है कि भारत में फुटबॉल के दीवानों और उनकी दीवानगी की कोई सीमा नहीं। भारत में अच्छे खासे फुटबॉल प्रेमी हैं जो क्लब लेवल के फुटबॉल के अलावा दुनिया भर के टॉप फुटबॉल स्टार्स के जुनूनी फैंस की तरह हर 4 साल उनका पीछा करते हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका भारत से कनेक्शन रहा है। भारतीय मूल के इन 4 खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के सरप्रीत सिंह हैं, तमिल मूल के 25 साल के निशान विल्ला पिलाई मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं, तहसीन मोहम्मद जमशेद केरल मूल के हैं और सैमुअल मुत्तुस्वामी कांगो गणराज्य के हैं। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हाल ही में राजनीति में आए ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस ने देश के स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर अपना बड़ा विजन एनडीटीवी के साथ साझा किया। एनडीटीवी इग्नाइट समिट में पेस ने खेलों में स्पोर्ट्स साइंस के इस्तेमाल बीजेपी में शामिल होने की वजह और बंगाल को लेकर प्राथमिकताओं पर खुलकर बात की। 18 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता ने कहा कि वो अपने दिवंगत पिता के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं, जिसका लक्ष्य खेल विज्ञान स्पोर्ट्स साइंस के जरिए देश के 50 करोड़ बच्चों को सशक्त बनाना है। फिल्मी दुनिया से सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 की पहली झलक आ गई है। बंटवारा 1947 का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पहली फिल्म का नाम लाहौर

0: तालिस था जिसे बदल दिया गया है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी नजर आएंगे। फिल्म 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज की जा रही है। यह फिल्म की कहानी असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लौर नहीं वेख्या वो जमियाई नहीं पर आधारित है। यह नाटक वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और रंगमंच की दुनिया में इसने धूम मचा दी है। इस नाटक का पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद भी मंचन हो रहा है। वित्तीय समाचारों में, अनिवासी भारत एनआरआई से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया पहल के बाद देश के प्रमुख बैंक्स ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट FCNR जमा पर ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी की है। RBI ने 5 जून 2026 को घोषणा की कि वह 30 सितंबर तक बैंक्स के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप विंडो खोलेगा, जिससे बैंक्स को FCNR बी जमा कर हेडिंग लागत वहन नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही नई FCNR बी जमा पर CRR और SLR छूट भी दी जाएगी। इस कदम के बाद SBI, ICICI बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक्स ने दरें बढ़ा दी हैं। RBI के इस फैसले को विदेशी निवेश आकर्षित करने और रुपए को स्थिर रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 60 से 70 अरब डॉलर्स तक का विदेशी पूंजी प्रवाह संभव है। FCNRB खाते पूरी तरह से प्रत्यावर्तनीय होते हैं और इन पर अर्जित ब्याज तथा मूलधन दोनों भारत में आयकर से मुक्त हैं। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकन डॉलर 95 रुपए 26 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66 रुपए 88 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
1: श्रोताओ, आज आप रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं, पूनम जी के समाचार आपने सुन लिए, मैं हूँ यतिंदर गुप्ता। श्रोताओ, जैसे कि हमने मैसेज में लिखा था कि आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं, साथ साथ में हम दो इनाम भी दे रहे हैं पूनम जी, दो टिकट।
0: क्या बात है,
1: दो इवेंट के। एक तो हमारा जो गाते रहो जो केदार जी का है प्रोग्राम, उसके हम दो टिकट देने वाले हैं। दूसरा एक गजल शाम होने वाली है जुलाई में।
0: क्या बात है,
1: तो उसके भी दो टिकट देने वाले हैं। और हमारे मेहमान रंजन जी, हमारे मेहमान अंकुर जी, वो स्टूडियो में आएंगे और एक हमारे मेहमान फ़ोन पे आएंगे, उनका नाम है निरंजन जी, तो उन सभी हम बात करेंगे। तो पूनम जी, कैसी हैं आप?
0: बहुत बढ़िया, आप बताएं।
1: कैसे रहा आपका 3-4 हफ्ते?
0: बहुत अच्छे रहे, और स्पेशली जो हम पीछे सुर वाइब्स का जो हमने प्रोग्राम देखा, हम लोग सिटी में गए और हमें इनवाइट किया गया दर्पण की तरफ से कि वो क्रूज अटेंड करें, वाज वेरी इंजॉयबल। एंड यतेन जी ने सबको हैरान कर दिया, अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाते हुए खाना पीना सब उन्हीं पे था, तो थैंक यू सो मच यतेन जी, इट वाज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग।
1: ये जो है ना, बहुत अच्छा हो गया उस दिन, जो है ना, मैं अगर प्लान कर भी पाता तो नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: वो
0: नहीं, इट वाज अ बिग एफर्ट जो आपने सबको खाना दिया इंडिविजुअली पैक्ड, तो वी आर हम्बल्ड बाय
1: दैट। नहीं, वो एक करना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन फिर सरप्राइज एक चीज़ होती है, एक चिड़िया का नाम है सरप्राइज, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है।
0: सही कहा आपने,
1: तो वो वरना बहुत और अच्छा हो सकता था, जो मैं बाद में लग रहा है, लेकिन
0: इट वाज अ बिग एफर्ट। ऐसा करने के लिए भी बड़ी प्लानिंग और हिम्मत चाहिए, और आपने बीवी को तो एक साल के लिए इंश्योर कर लिया।
1: अभी ये नहीं मालूम, एक साल का, I don't know.
0: जैसे हम लोग करवा चौथ रखते हैं तो हस्बैंड को इंश्योर कर देते हैं, आपने उन्हें इंश्योरेंस करवा ली है, अब एक साल के लिए अच्छे खाने, अच्छा बिहेवियर, वो सब मिलेगा आपको।
1: श्रोताओं, बताइए कि जो हमारा ये विविट होता है, हम अगर चाहें तो दर्पण की तरफ से क्रूज करते हैं मे बी नेक्स्ट ईयर, अब इस साल तो हो गया मेरे ख्याल से, तो कितने लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं साथ में,
0: एक
1: तो वो भी हम कर सकते हैं। हम क्रूज करते थे पहले, लेकिन समहाउ वो जो है
0: नहीं, मुझे लगता है इस तरह का क्रूज में लोगों की पार्टिसिपेशन भी थी और जो सुर वाइब्स के जो आए थे गायक और दूसरे कलाकार
1: लाइव ऑर्केस्ट्रा,
0: उन्होंने बहुत बड़ी बात है
1: अपना,
0: वो दो घंटे का क्रूज एक्चुअली विविड देखने का तो मौका मिला ही नहीं,
1: आपने सही बोला,
0: क्योंकि अंदर का माहौल ही इतना गर्म था।
1: आपने सही बात बोली कि मैं बाद में एहसास करा कि अरे विवर तो देखे नहीं,
0: देखे उसे, वो जो प्रोग्राम हमारा बॉलीवुड के गाने 60-70 के दशक के, क्या बात थी, मजा आ गया।
1: पूनम जी, आज का विचार आप क्या लेके आई हैं?
0: मैं एक गौरंगा दास जो कि हरे कृष्णा मिशन के हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा मुझे छोटा सा शॉट मिला है, और उन्होंने कहा है कि मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए केवल 3 आदतें अपनानी ज़रूरी हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी।
2: दोस्त ने कुछ बोला, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, हाँ दर्द हुआ, फील करो, पर उसी घटना को बार बार दिमाग में रिप्ले करना, ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, जो हो गया जाने दो, अगला कदम सोचो। दूसरा, रोज रात को सोने से पहले अपने फोन में एक नोट खोलो और लिखो, आज मैंने क्या अवॉइड किया जो मुझे करना चाहिए था। वो एक लाइन आपको खुद की सबसे बड़ी कमजोरी बता देगी, उसी पर अगले दिन काम करो, बाकी सब बाद में। तीसरा, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसके बारे में सोचना बंद करो। ट्रैफिक में फंसे हो, आपके कंट्रोल में नहीं, किसी ने रिजेक्ट किया, आपके कंट्रोल में नहीं, मौसम खराब है, आपके कंट्रोल में नहीं भैया, अपना सारा दिमाग और एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो आप बदल सकते हो, बाकी सब छोड़ दो। ये 3 आदतें कोई एक दिन में नहीं बनती, पर जिस दिन बन जाती हैं आप लाइफ में मेंटली स्ट्रांग हो।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस
0: जी।
1: तो एक इसी बात पे एक सूदिंग सा भजन, मैंने सुना है कि अगर सूदिंग कोई चीज़ आप सुनते हैं तो उसका असर पड़ता है, वही चीज़
0: मन को शांत कर देती है।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद।
1: ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर का संदेश। श्रोताओं, हम आपकी बात कराने जा रहे हैं हमारे पहले मेहमान जो फोन पे हैं। निरंजन जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार यतीन जी। नमस्कार
1: निरंजन जी, आप पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी हाँ, मैं सिडनी का निवासी हूँ और करीब 35 साल से हम यहाँ रहते हैं, बीक्रॉफ्ट में रहता हूँ और 25-1 साल से मेरा रहा है ये संदर्भ ये वेदांत सोसाइटी से, रामकृष्ण मिशन से और उनकी गतिविधियों के बारे में, और एक जो गतिविधि होने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मौके के लिए धन्यवाद
1: जी। नंदन जी, तो आप जो स्वामी जी आ रहे हैं सब प्रिय नंदन जी, तो उनके बारे में भी बताइए।
2: जी हाँ, तो स्वामी सर्व प्रियानंद जी, ये है पूरा नाम उनका, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी के प्रमुख हैं और ये रामकृष्ण परंपरा के वरिष्ठ सन्यासी हैं और बहुत ही आधुनिक तरीके से और लोकप्रिय तरीके से ये अद्वैत वेदांत के बारे में लोगों को बताते हैं। उसके बारे में शिक्षक भी कहा जा रहा है इनको। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने वेदांत और आध्यात्मिक दर्शन, मतलब जो फिलॉसफी जिसे कहेंगे, जिस सरल और लॉजिकल तरीके से और आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया है लोगों के सामने, दुनिया भर लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। उनको यूट्यूब स्वामी भी कहा गया है। यूट्यूब और टेडेक्स पर और अनेक मंचों पर उन्होंने व्याख्यान दिए हैं और खास तौर से युवाओं और प्रोफेशनल्स और शिक्षित वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं ये।
1: ये अद्वैत वेदांत क्या होता है, अगर थोड़ी मैं अपनी जानकारी भी बढ़ा लूं?
2: हाँ जी जरूर। तो अब ये अद्वैत वेदांत के बारे में बताने का काम तो वैसे स्वामी जीओं का है,
1: लेकिन थोड़ा सा
2: है तो मैं जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल,
1: हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग।
2: अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं, आपने तो कम पढ़े लिखे से पूछ लिया सवाल। ये खैर, तो अद्वैत वेदांत का मूल संदेश ये है कि हमारे भीतर और समस्त प्रकृति में सबके अंदर एक ही चेतना कार्यरत है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। हमारी सारी एकता उस गहरी स्थिति पर जाके एकता है। हमारे भले ही बाहर से सब अलग अलग लगे, भिन्न भिन्न लगे, लेकिन हम अगर अपने आप को अपने शरीर और मन और प्रोफेशन और परिवार और सामाजिक पहचान से उठाएं तो दिखता है कि हमारे में इतनी एकता है। और जब हम इस गहरे सत्य को समझ लेते हैं तो ये केवल फिलोसॉफिकल और मतलब ऐसे बातों की बात नहीं रह जाती, जीवन में भी, रोजमर्रा के जीवन में अधिक शांति, अधिक आत्मविश्वास। अभी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में बात चल रही थी कि जिस पे कंट्रोल है उस पे फोकस करिए, तो आत्मविश्वास ऐसी बातों पे कि भाई मुझे, मैं क्या फर्क कर सकता हूँ और किस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे समझना, विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, उसके साथ आत्मविश्वास और शांति, और बहुत बड़ी बात दूसरों के प्रति करुणा। सिर्फ मैं और मेरा नहीं, जब मैं और मेरा, सारा जगत मैं और मेरा हो जाता है तो सबके प्रति प्रेम भाव और सबके प्रति करुणा भी जागृत होती है। ये अद्वैत का सार है।
1: आज हमारा प्रोग्राम भी काफी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी है, होने वाला है, तो ये अच्छी है श्रोताओं। इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को कि स्वामी जी जो आ रहे हैं वो
3: कब। उससे पहले मैं यतीन जी एक कहना चाहूंगी कि जो निरंजन जी ने बात की है कि अद्वैत क्या है, वो जो चेतना है वो सबके अंदर है। मैं स्कूल ऑफ फिलोसफी से जुड़ी हुई हूँ और उसमें उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे सोना है, सोने की आप रिंग बनवा सकते हैं, इयररिंग बनवा सकते हैं, चेन, बट सोना इज कॉमन एवरीवेयर। तो जो डिनोमिनेटर है तो वो जो चेतना है, और जब हम उस चेतना को, बाहरी चेतना को अंदरूनी चेतना से जोड़ दो, वो एक ही चीज़ है। तो जब हम बाहर के लोगों को हम ये समझें कि ये हम ही हैं, हम वो जो कॉमन चीज़ वो सेम है इस, तो थैंक यू।
1: बहुत अच्छी बात आपने पूनम जी बड़ी अच्छे से बताया। हाँ निरंजन जी बताइए कि आपका ये प्रोग्राम कब होने वाला है।
2: तो स्वामी जी यहाँ आ रहे हैं अगस्त 21 से 23 तक।
1: अच्छा।
2: और अगस्त 23 को हमने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के बड़े हॉल में, जो उनका साउथ पैरामेटा कैंपस है, वहां पे एक बड़ा व्याख्यान रखा है सर इयन टर्बुट हॉल में, और वो शाम को 5 बजे है। तो आपके श्रोता प्लीज नोट कर लें, 23 अगस्त शाम को 5 बजे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी साउथ पैरामेटा कैंपस, और vedantsydney.org पे अधिक जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा नॉमिनल टिकट है, हमें अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, 10-20 वगैरह है, तो वो टिकट लेके जरूर आए, क्योंकि फिर हमारा सारा इंतजाम करने में सहूलियत,
1: उसे मैनेज करने में भी आसानी रहती है कि कितने लोग आ रहे हैं। अगर वैसे हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
3: वो एड्रेस दोबारा रिपीट
1: कर, एड्रेस भी बताइए, अपना फोन नंबर भी बता दीजिए, जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं।
2: जी हाँ तो एड्रेस तो है सर इयन टर्बुट हॉल साउथ पैरामेटा कैंपस वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, 23rd August 5 PM। और मैं,
1: ये दिन कौन सा होगा?
2: ये संडे है।
1: संडे, अच्छा।
2: और कांटेक्ट वैसे तो मतलब मेरा, लेकिन एक वो वेबसाइट पे पूरा कांटेक्ट वगैरह है, अगर वहाँ कांटेक्ट करेंगे तो मतलब हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो ईमेल देखेंगे, मैसेज देखेंगे, टाइमली रिप्लाई कर पाएंगे। एक जने के पास आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए।
1: जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
3: तो निरंजन जी, ये जो है इवेंट, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑनलाइन?
2: जी हाँ, हम रिक्वेस्ट करते हैं श्रोताओं से कि आप रजिस्टर करिए, एक नॉमिनल कॉस्ट है,
1: वो बेसिकली टिकट है। कितने का है टिकट निरंजन जी?
2: तो ऐसा है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री है।
1: अच्छा।
2: बाकी फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए 10 है, और बाकी जनरल एडमिशन 20 रखा है, और एक 30 का भी ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी और मदद करें, क्योंकि हमारे कॉस्ट होते हैं, श्रोताओं पे है, 20 का लें या 30 का लें, स्टूडेंट्स हैं तो और भी सस्ता है।
1: जी निरंजन जी, हम आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं दर्पण के परिवार की तरफ से भी, और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर देंगे। अगर कोई श्रोता का कुछ, हाँ वही, अगर हम अगर आप हमें अपना कोई ब्रोशर किस्म का है वो अगर भेज देंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगस्त तक हम आपसे फिर से बातचीत भी करते रहेंगे।
2: ठीक है, ठीक है, अभी तो अगस्त के लिए टाइम है, अगर बीच में अगर आप दे देंगे।
1: आपने आज जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, आपका धन्यवाद।

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: ये थी हमारे स्पॉन्सर Curry Master का संदेश.
2: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
3: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं.
1: श्रोताओं, हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं. अंकुर जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है.
4: थैंक यू सो मच.
1: मैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव, इनका पूरा नाम है लेकिन यहाँ पे अंकुर जी से काम चलाएंगे. तो अंकुर जी, जैसे कि मैंने अपने संदेश में लिखा है कि आज हम आपकी जो भी विशेषताएं हैं वो समाज के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे.
4: ज़रूर सर.
1: काफ़ी लोग मेंटल हो चुके हैं ऑलरेडी. उनको कैसे कैसे अनमेंट. एक मेरा, मैं शुरू में एक बात कह रहा हूँ कि मेरा जो मानना है इसमें ये है कि हर आदमी ही, अगर आप वैसे देखोगे तो हर आदमी ही उसमें आता है, चलता है. हर आदमी बीमार होता है. अगर आप किसी की देखोगे कि भाई पूरा वो ठीक है क्या, वो नहीं होता है. कुछ ना कुछ तो चलता रहता है.
4: ज़रूर,
1: बिल्कुल. तो उसमें लेकिन आज हम जो चाहते हैं कि हमारा विमर्श ऐसे हो कि जस्ट वी आर टॉकिंग, है ना, जस्ट डिस्कसिंग टॉकिंग. कोई यहाँ सोल्यूशन नहीं हो रहा है. आप अपने डॉक्टर से जैसे मिलते हैं, जैसे बात करते हैं, करिए, लेकिन कभी कभी क्लिक कर जाती है बात को. तो वी जस्ट डिस्कसिंग दैट पार्ट, ठीक है ना
4: जी.
1: अच्छा श्रोताओं, मैं फिर से बता दूं कि आज हम दो दो टिकट दो प्रोग्राम के दे रहे हैं. तो एक है गाता रहे और दूसरा है गजल इवनिंग, ठीक है. उसके हम फर्दर डिटेल भी देते रहेंगे आपको, लेकिन पार्टिसिपेट करिए. आप अगर मुझे फ़ोन भी करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 0421-590-791. तो अंकुर जी, पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आप यहाँ कब आए, क्या करते हैं.
4: जी जी जी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके श्रोताओं से जुड़ सकूँ
1: जी,
4: यहाँ पर अपने बारे में कुछ डिस्कस कर सकूँ. तो मेरा नाम डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव है और मैं ऑस्ट्रेलिया 2011 में आया. मैं मूलतः प्रयागराज को बिलोंग करता हूँ.
1: अरे वाह, क्या बात है.
4: लेकिन सच कहूँ तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा कभी रहा नहीं. मेरी पैदाइश वहाँ की है.
1: अच्छा.
4: लेकिन मैं वहाँ कभी रहा नहीं. पापा की जॉब ट्रांसफरेबल थी तो हम शुरू में बरेली में थे, फिर कानपुर में रहे, और फिर मेरी मेजर जो पढ़ाई है, मेरी मेडिकल पढ़ाई है, वो दिल्ली से हुई. अच्छा. और 2011 में मैं दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया आया, पहले रॉकहैम्पटन में और फिर उसके बाद यहाँ सिडनी में 2013 जनवरी में मैं उतरा. तो मैं पेशे से साइकाट्रिस्ट हूँ. मैं ऑस्ट्रेलिया आने से पहले भी साइकाट्रिस्ट ही था, वहाँ पर कंसल्टेंट था, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से चीज़ें बदली कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया चले आए. और ऑस्ट्रेलिया में मैंने रॉकहैम्पटन में पहले जॉब की और अब मैं यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में एक सिडनी में बड़े हॉस्पिटल में मैं एक पेरिनेटल साइकाट्रिस्ट हूँ. तो मेरी जो
1: क्या फ़र्क है,
4: तो जो मेरी स्पेशलिटी है, हालांकि मैं सारे एडल्ट पेशेंट्स देखता हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है वो है पेरिनेटल साइकाट्री, जिसका मतलब है कि मैं उन औरतों के साथ डील करता हूँ जो या तो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं या उनके बच्चे एक साल से कम उम्र के हैं.
1: वाह,
5: उन्हीं को ज़्यादा.
4: तो जी, तो मेरा वो जी हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, पोस्टपार्टम साइकोसिस. और जैसा कि आप जानेंगे कि इन सब चीज़ों में, जैसा आपने बहुत पहले कहा कि उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं, तो इस तरह के स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान औरतें जो हमारे इंडियन या दूसरे मूल देशों से आती हैं, उनको हमेशा सपोर्ट नहीं मिलता जो उनको अपने देशों में मिलता है जहां उनके परिवार होते हैं. तो ऐसे देश में जहां वो कहीं और रह रही हैं, जहां भाषा डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, जहां परिवार की सारी सुख सुविधाएं और साथ नहीं है, वहां पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होना लाजमी है. तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं इस ऐसे सेक्टर में काम करता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील करने का मौका मिलता है जो हमारे देश से या आसपास के देशों से आए हैं और यहाँ पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास इनफ सुविधाएं नहीं है, इनफ
5: सपोर्ट
4: नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है उनके पास।
5: सही कहा।
1: क्या आप इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम मदर है समझो, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है?
4: जी बिल्कुल।
1: बच्चा एक प्लान भी होता है, एक अनप्लान भी होता है, लेकिन वो उतना सोच नहीं पाते हैं। वो है चलो मातृत्व है, मैं माँ बनने जा रही हूँ। आप पूनम जी बताइएगा इसके बारे में। लेकिन जब वो देखती है, अरे मेरा जो पास वाला जीवन था वो तो मेरे यहाँ से निकल गया, सच एज हैविंग पार्टी, जाना है, बॉडी की शेप बदलती है, आप ऑफिस में जा रहे हो, आपका सब कुछ बदल जाता, सब कुछ ही बदल जाता
5: है जी। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
1: हाँ।
5: और अगर आपके पार्टनर का सपोर्ट है तो आपकी जो जर्नी है 9 महीने की वो ठीक ठाक सी निकल जाती है। बट अगर सपोर्ट भी नहीं है तो आप अगर लो हैं तो जो आने वाला बच्चा फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी मेंटल, क्योंकि वो तो सब कुछ माँ से ही ले रहा है, जैसी माँ के मन की हालत होगी वही बच्चा लेके आ फाइनली दुनिया में आ। वो ऐसे मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे ख्याल से अंकुर जी नहीं ठीक हो सकते, एम आई राइट?
4: नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहली बात तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम इस बात पर बात कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग हमें सुन रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस
5: नहीं,
4: लोग जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस चीज से जूझ रहे हैं और उसका क्या इलाज,
5: क्या कारण है, और वो ये भी नहीं समझ पाते कि ऐसे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
4: बिल्कुल। तो आपने जो टर्म यूज किया हार्मोनल, और आपने जो टर्म यूज किया कि जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, ये दो सबसे बड़ी एक्चुअली चीजें हैं जो एक माँ के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी तरह की मानसिक अवस्था को प्रोड्यूस करती हैं। तो बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट, आई मस्ट से यू आर ऑन एक्चुअली।
5: और मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन बैकग्राउंड से जो महिलाएं आती हैं, नहीं, क्योंकि मैं अस्पताल में काम करती हूँ और हम लोग वहाँ, मैं अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो हमारे पास जो आते हैं महिलाएं आती हैं वो सिर्फ साउथ एशियन बैकग्राउंड से नहीं है, वो सभी बैकग्राउंड से, लेबनीज और अरबिक, और मैंने नोटिस किया है कि वो ये प्रॉब्लम सब में कॉमन है।
1: देखिए वो तो
5: कोई डिग्री का फर्क हो सकता है।
4: आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर ग्लोबली आप देखें कि मेटरनल मेंटल इलनेस की इंसिडेंस क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सेम है।
5: जी,
4: ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम होती है जहाँ पर हेल्प अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे अलग तरह की परेशानियाँ हैं।
5: बिल्कुल सही।
4: वहाँ सास के साथ परेशानी है, सास बहू की परेशानी है।
1: अब
5: ये तो बहुत ही आपने पिटारा खोल दिया, ये तो दुखती रख पे हाथ रख दिया।
1: आप मुझे ये बताइए, सास वो रशियन है, यूक्रेन है,
5: ब्रिटिश है,
1: सास सास होते हैं,
4: सब एक जैसे हैं। और मैं सही
1: तो
4: बताऊं,
1: मेरा क्वेश्चन फिर आपसे ये रहेगा कि बिफोर वी गो फर्दर, इस सास सारी की सारी सास इस दुनिया में एक जैसे क्यों होते हैं, ये मेरा प्रश्न है।
4: ये सास ही नहीं के साथ, सास के साथ ही केवल ऐसा नहीं है,
1: मेरा
4: ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली एक जैसे।
1: वापस आना चाहता हूँ, प्लीज। बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा, एक ही प्रश्न है, अभी तक मैं उसका जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ। दुनिया की सारी सास एक जैसी क्यों होती है, ये मेरा एक प्रश्न है।
5: और ये वही औरत है जो बेटे को इंसिस्ट करती है शादी करो, गृहस्थी बचाओ, ऐसे कर, और शादी होते ही मेरे विचार से इसका आंसर ये होगा।
1: जी जी, पूनम जी आप बताएं,
5: अंकुर जी आप भी शायद सहमत हो कि इनसिक्योरिटी, लेस अटेंशन। आज तक लड़के की जिंदगी में केवल माँ ही टॉप क्लास थी
1: जी,
5: और जब शादी हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है, और ये किसी भी मार्क से बर्दाश्त, जो अकलमंद लोग होते हैं उसमें पढ़ाई लिखाई भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ी लिखी होगी तो ही समझदार होगी।
1: इससे पढ़ी लिखी, काली गोरी पीली,
5: सब एक जैसे
4: है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सास, जो माँ रही है, उसने अपना पूरा जीवन लिटरली एक ही चीज पे फोकस किया था, वो था अपना बेटा या अपनी बेटी। लेकिन हमारे सामाजिक जो हमारी जो प्रणाली है, उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि बेटा मेरा है और बेटी जो है वो ब्याह के चली जाएगी दूसरे घर। तो दमाद के साथ वो दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो हमारी सामाजिक संस्थाएं वो चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, इसलिए ये समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आपके जवाब सवाल का जवाब बिल्कुल जो आपने कहा पूनम जी सही है।
1: तो पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए क्या मेरा प्रश्न ठीक है?
4: प्रश्न ठीक है पर उसका आंसर आपको शायद कभी ना मिले।
1: कम से कम एक चीज आज पक्की होगी, क्योंकि लोग मुर्जे जो है ना मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि ये क्यों, क्योंकि मैं इस प्रश्न का ढूंढ रहा हूँ जवाब, अभी तक मिल नहीं पाया।
4: जी जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि एक औरत के जीवन में उसका परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बेटा उसका प्राइड होता है और उसने बेटे को एक तरीके से पाल पोस के बड़ा किया होता है। वो उसकी शादी तो करना चाहती है क्योंकि वो एक सामाजिक एक्सपेक्टेशन है जो उसे करनी है, लेकिन जब वो अपनी बीवी की तरफ ध्यान देना शुरू करता है तो एक इनसिक्योरिटी आती है, अच्छी से अच्छी समझदार से समझदार माँ के अंदर वो भावना आती है, और सिर्फ माँ के अंदर ही, सबके अंदर आती है।
1: श्रोताओं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे फ़ोन करिए, बहुत बड़ी हम विश्व युद्ध जैसी कोई प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं।
5: विश्व स्तर की प्रॉब्लम,
1: विश्व स्तर की प्रॉब्लम है, कोई भी मुझे फ़ोन कर सकता है 0421-590-791। डॉक्टर साहब ये तो आपने जो है ना वो मैं तो कुछ और बात करना चाह रहा था,
4: गिटारा खुल गया।
1: आपने विश्व वाले
5: कहते हैं ना कैन ऑफ वर्म्स,
1: हाँ वो exactly. वो शुरू कर दिया।
4: exactly.
1: तो पहले तो एक काम करते हैं आम, एक क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा होगा, सब समय उसमें चला जाएगा, तो एक तो आप अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए और फिर हम चाहते हैं कि जो जो संगीत है वो कैसे हम एक हीलिंग उसमें लेके आ सकते हैं, जो ऐसा संगीत है। आज हमने एक भजन भी ऐसे बजाया था जो सूदिंग होता है
4: जी,
1: वो आपको हेल्प करता है टू काम डाउन टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए, आपके जो गायकी की दुनिया है कैसे शुरू हुई क्या, उसके बारे में बात करते हैं और फिर आपका एक एक एक गाना भी सुनते हैं।
4: जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो देखिए अभी तक तो मैंने ये बात करी कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक पेरिनेटल साइकाइट्रिस्ट हूँ, और इसके अलावा मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी एक और दुनिया है, ऑफ कोर्स मेरा परिवार तो है ही, और वो दुनिया है म्यूज़िक की।
1: जी
4: म्यूज़िक से मैं बचपन से ही बहुत डीपली जुड़ा हुआ था, और शायद मैं कहूँगा भगवान की कृपा थी, क्योंकि मैंने कोई शुरू में कोई तालीम नहीं ली, मैंने कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की उससे रिलेटेड, बस मुझे इतना याद है अपने बचपन में कि मैं हर वक्त सिर्फ म्यूज़िक से ही रिलेटेड काम करता रहता था, इतना कि मम्मी पापा को रोकना पड़ता था ये काम करने के लिए कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कुछ अच्छा? काम की चीज़ कर लो, कुछ बनना है,
1: बन जाओ गया।
5: ये आपके प्रारब्ध कर्म थे जो आप पीछे से लेकर आए
4: शायद। जी जी मैं ये और कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस बात को।
5: आपका जो जुड़ाव है, आपका जो झुकाव है म्यूजिक के, और फिर आप ऐसी फील्ड में भी आ गए।
4: जी तो बिल्कुल, बहुत ही आर्टिस्टिक फील्ड है, साइकियाट्री इज अ वेरी आर्टिस्टिक फील्ड। तो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद समय मिलना थोड़ा शुरू हुआ, यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी बेटर है तो आपको अपनी हॉबीज़ और अपने और पैशन को फॉलो करने का समय मिलता है, वो समय मिलने लगा, ऐसे लोगों से जुड़ने लगा जो बहुत ही मुझे इनकरेजमेंट देने लगे, मुझे कहने लगे नहीं तुम कुछ कर सकते हो। और पिछले 5-7 सालों में मैं अपने गाने रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था, अपने जो जिनको मुझे सुनना पसंद है वो उनको शेयर करता था, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कुछ महीने पहले जब अंदर से ये फीलिंग आने लगी कि नहीं अब ये समय आ गया है कि मैं इसे और लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों के सामने रूबरू सामने बैठ के गा सकूँ कि, और इस तरह से इस प्रोग्राम का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ जिसका नाम मैंने रखा है सुर और एहसास।
1: सुर और एहसास,
4: एहसास। तो ये एक म्यूजिकल इवनिंग है जो मैंने प्लान की है 11 जुलाई को, सो अगले महीने, एक महीने से कम समय रह गया है, और ये इवनिंग मैं डेडिकेट करना चाह रहा हूँ मेंटल हेल्थ को। इससे जो भी प्रोसीडिंग्स आएंगी वो मेंटल हेल्थ से जुड़े किसी खूबसूरत काम में मैं दूंगा। मुझे लगा घर से ही शुरू करनी चाहिए चैरिटी, तो मेंटल हेल्थ से अच्छा और क्या हो सकता है। और सो इस इवनिंग में मेरे पास लाइव बैंड होगा और लाइव म्यूजिशियंस होंगे, बहुत ही अच्छे सिडनी के म्यूजिशियंस होंगे, प्राइमरीली मैं सिंगर होंगा। जो गाने मैंने चुने हैं वो मेरे दिल के करीब गज़लें हैं, जो क्योंकि मैं ज़्यादातर गज़ल पसंद करता हूँ या सॉफ्ट बॉलीवुड म्यूज़िक पसंद करता हूँ। तो जैसा कि मैं अपने सभी लोगों से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी शाम होगी जहाँ पर आप शायद बैठेंगे अपनी सीट पर, हो सकता है कि आप बाहर आकर और स्टेज के पास खड़े होकर नाचें नहीं, आपके पैर ना थिरके क्योंकि ये स्लो गजल होगी, लेकिन आपकी रूह जरूर थिरकेगी।
1: क्या बात,
4: ये मेरा वादा है।
5: बहुत अच्छे।
4: और तो ये शाम लेकर मैं आया हूं।
1: इस शाम का तो जैसे कोई इसमें आना चाहता है शाम में आपके साथ में, तो उसके बारे में बताइए, उसका टिकट क्या है और सब बातें बताइए।
4: ये एक टिकटेड इवेंट है और एक बहुत ही अच्छे वेन्यू पे है, जो कि एक ऑडिटोरियम है हिल्स एडवेंटिस्ट चर्च में, जो कि नॉर्थ कैलिविल में है, 4 गमनट क्लोज उसका एड्रेस है। और $39

0: मैं एक बहुत बड़ा इवेंट नहीं करना चाहता, मैं एक ऐसा इवेंट करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंटीमेट हो, जहाँ पर
1: क्या बात
0: मैं
1: है।
0: कन्वर्सेशन कर सकूँ मेरे सुनने वालों के साथ, रादर देन कि स्टेज में ऊपर चढ़ के डांस
1: क्योंकि
0: हो और गाने हो।
1: ये
0: और
1: इसका पर्पस आई थिंक एंटरटेनमेंट से ज़्यादा है कि जैसे कि आपने अभी कहा कि लोगों के दिल के नज़दीक पहुंचना
0: जी
1: और उन्हें
0: जी
1: ये लगना कि ये तो मेरी स्थिति पे गा रहे हैं।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इसलिए मैंने इसको बहुत ही इंटीमेट रखा है, बहुत ही छोटा रखा है,
1: बिल्कुल सही है, वही लोग आए जो रियली
0: जो
1: इंटरेस्टेड
0: रियली
1: हैं।
0: इंटरेस्टेड हैं गजलों में और इंटीमेट बातें करने में, रादर देन सिर्फ
1: सुपरफ्लूस
0: बिल्कुल
1: बातें
0: सुपरफ्लूस
1: करना।
0: बात। जी। तो ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन है।
1: बहुत बढ़िया। तो फिर
2: तो इसका जो आ, आ, जो फ्लायर वगैरह है कुछ आपने बनाया कुछ उसका?
0: जी, इसका फ्लायर है और मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी उसको डाला है। मैं सही कहूँ तो
2: अच्छा
0: कुछ समय पहले तक मैं फेसबुक पे ज़्यादा रहता नहीं था, मैं सोशल मीडिया ज़्यादा जाता नहीं, सोशल मीडिया पे। मेरा छोटा परिवार है खुद का और दो बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे,
2: तो
0: और वो
2: परिवार
0: मेरी
2: बड़ा
0: दुनिया
2: करिए
0: है।
2: ना।
0: अब
1: नहीं,
0: परिवार एक्सपैंड
1: कर
0: हो
1: लिया ना,
0: रहा
1: अद्वैत में आ गए अभी। इनका
2: है।
1: ये जो म्यूजिक का
2: नहीं, नहीं
1: प्रोग्राम
2: नहीं
1: करना
2: नहीं
1: ही
2: इनके
1: इसका
2: नहीं, नहीं
1: एक
2: इनके अंदर वो कसक है कि छोटा सा परिवार है, इसका बड़ा करिए ना। ऑस्ट्रेलिया में तो
1: नहीं,
2: आप तीन चार पांच
1: खूनी
2: छह जो
1: खूनी रिश्ते जो हैं वो छोटे हैं, बट ये उससे आगे बढ़ रहे
2: आप नहीं
1: हैं।
2: समझ रही हैं पूनम जी, आप बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, हमारा यहाँ पे जो है कम से कम तीन बच्चों का कंसेप्ट है।
0: जी, तो मैं क्लियर कर दूं, मेरा छोटा सा परिवार जो है उसमें मैं बहुत खुश हूं। उसको
1: वो
0: उसको और बड़ा
1: सबसे
0: करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
1: नहीं, द वेरी फैक्ट कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं, परिवार तो बढ़ गया इनका।
0: परिवार, जी हाँ, अब परिवार से
2: जी
0: खून से बाहर बढ़ के
2: जी
0: बहुत बड़ा होने वाला
2: वैसे
0: है
2: मैं बता
0: म्यूजिकल
2: दूं और
0: परिवार।
2: श्रोताओं को भी बता दूं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम थ्री का है कंसेप्ट।
0: जी।
2: तो हमारे एक ट्रेजरर होते थे, उनका नाम पीटर कोस्टेलो था,
0: जी।
2: आपके आने के पहले यहाँ पे।
0: जी।
2: तो उन्होंने बेबी बोनस करके एक स्कीम शुरू करी थी। तो उसमें ये था कि भाई जब उन्होंने स्पीच दी पार्लियामेंट में कि $5,000 मिलते थे,
0: जी जी
2: तो उनका ये था कि भाई तीन बच्चे करना चाहिए मिनिमम किसी को। तो पूछा भाई क्यों, तो एक कहा कि एक मम्मी को, एक मम्मी के लिए, एक डैडी के लिए, और फिर एक उन्होंने बोला कंट्री के लिए।
1: कंट्री के
2: तो मैं कहता हूँ कि वो एक पीटर कोस्टेलो के लिए, तो तीन कम से कम
1: नहीं,
2: करना।
1: यतीन जी ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी था। ये
2: जी
1: पहला बेटा, सबसे पहला बेटा जो था वो सिख बनेगा क्योंकि
2: जी
1: उसको मैदान में भेजना है, और दूसरा तीसरा बच्चा जो होगा वो आपका है,
2: जी
1: बट पहले बच्चे को यही।
2: जी
1: हालांकि और कंट्रीज में भी कुछ है, ब्रिटेन
2: जी
1: जहाँ पर कई कंट्रीज
2: तो
1: में
2: हमें
1: ये है।
2: हमें अपना भी बढ़ाना है यहाँ पे। तो आप, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो ये
1: और फिर आप तो इस लाइन
2: आप
1: में हैं,
2: हाँ
1: बीवी
2: एग्जैक्टली।
1: की मेंटल कंडीशन टॉप
2: तो
1: क्लास होगी।
2: दो क्वेश्चन और है मेरे इस प्रोग्राम के बारे में।
0: जी
2: एक तो वहाँ पे जैसे पूरी, जैसे खाने पीने का भी इंतजाम होगा आई बिलीव,
0: जी जी
2: ठीक है ना?
0: जी
2: और दूसरा ये है कि और भी कोई सिंगर है या आपका है कुछ इस तरीके से,
0: जी
2: और कोई आदमी आपको अगर इसमें हेल्प करना चाहता है, कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है?
0: जी जी एक तो मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए मुझसे जुड़ सकते हैं इसके थ्रू,
2: तो क्या फेसबुक पेज का नाम
0: और
2: क्या है?
0: जी
2: आप
0: मेरा
2: थोड़ा
0: अंकुर श्रीवास्तव
2: अंकुर श्रीवास्तव,
0: नाम है।
2: अच्छा
0: जी, हिंदी में नाम है एक्चुअली अंकुर श्रीवास्तव।
2: तो उसमें हिंदी
0: अगर
2: में
0: हिंदी
2: लिखना
0: में नाम
2: पड़ेगा
0: लिखेंगे तो
2: तो
0: मिलेगा।
2: आएगा। अच्छा, ओके।
0: जी, वही मेन तरीका है मेरे से
2: आप
0: जुड़ने
2: अपना
0: का।
2: फोन नंबर भी देना चाहेंगे
0: अगर
2: अभी?
0: जी आगे मैं आपको
2: हाँ,
0: फोन नंबर दे दूंगा।
2: नहीं तो हम जब फ्लायर होगा अगर आप नहीं
1: हाँ
2: देना
1: वो
2: चाहते तो
1: हम
2: हम उस
1: अपने
0: जी
1: दर्पण के ग्रुप
2: उसमें
1: में डाल
0: जी
1: देंगे, और टाइम टू
0: जी
1: टाइम अभी
0: जी
1: 11 जुलाई को
0: जी
1: है तो हर हफ्ते हम
2: तो
1: उसको
2: एक काम
1: प्रमोट
2: करते हैं
0: करते
2: कि
0: हैं।
2: क्यों ना जो लोग हैं आपकी
0: जी
2: आवाज़ को सुन लें। हाउ अबाउट दैट?
0: जरूर
2: तो
0: जरूर
2: एक आपका जो कैरियोकी वाला है वो हम बजाते हैं, देखिए कैसे जाता है। ठीक है,

0: क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया भाई।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
2: मैं कहती प्रोग्राम से ज्यादा तो हमने आपके साथ आमने सामने बैठ के सुना।
0: हाँ हाँ, ये लकी कभी किसी को मुकम्मल जहाँ, ये जो गजल का है ये भी एक
2: कितना डीप मीनिंग है इसका।
0: संसार में प्यार बहुत है लेकिन जहाँ से चाहिए वहाँ नहीं मिलता, ये सारी हर एक की प्रॉब्लम है
1: जी।
2: एक्सपेक्टेशन, वो कहते हैं इफ एक्सपेक्टेशन इज डिलीटेड फ्रॉम योर लाइफ, समझे आप सबसे खुश है इंसान
0: जी जी।